अबे अम्मा आड़ी का ए जान बता स्तासी बुतु निया साहू सांता मगदलेना सोफिया बारत कोमनर होर मरा नांगा केउन अंदा तुकु माइस किता समसामा गावी बाबु गोयत बोरोई बोरे गाई राकाडू सी